हिल परी हिला तुझे कप्पा लीला टीला आगो हिल हिल परी हिला तुझे कप्पा लीला टीला तुझे कप्पा लीला टीला तुझे कप्पा लीला टीला गो फैशन मराठी सोबई।

0: अतो
1: जय गोरी पाई मल बधाई की जय गोरी पाई मल बधाई की जय गोरी
2: पेशर पेश

लठाया ला दिल दुखाते हैं भाई दिल तो उपाशी रहते हैं क्या लठाया ला दिल दुखाते हैं भाई दिल तो उपाशी रहते हैं दिल हकलुन मागारिये ते काय बोलत नहीं काय मागत नहीं जीव लावत मालकावरी

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होठों को छू लूंगी।

नमस्कार, मैं नाइकोडे नगर तालुका मोहोड़ जिला सोलापुर से सैपन शेख बोल रहा हूँ। मैडम, आज काफ़ी 5-7 दिन के बाद मैं वॉइस भेज रहा हूँ, कृपया इसे शामिल कर लीजिएगा और जल्द से जल्द शामिल कर लीजिए, क्योंकि मुझे गांव निकलना है दूसरे गांव के लिए, तो आप जल्द से जल्द इसको शामिल कर लेना। संजय मैंदरगी सर ने जो तलत महमूद पर जो एक शो किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो शो को मैंने सुना कल रात में, काफ़ी दिल को छू गया, और आखिरी में जाते जाते जो उन्होंने शायरी कही थी वो भी काबिले तारीफ रही। पेटे सर जो पेश करते प्रोग्राम एक चित्रपट एक गुंजन, उसके तहत मुझे आशिकी 2 फिल्म के गाने बहुत अच्छे लगे, और आपने जयवंत कुलकर्णी पर जो बिग रेडियो क्लासिकल शो किया वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी कि कुल मिलाकर सभी शो बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपके आने की खुशी तो काफ़ी हो चुकी है तमाम लिसनर्स को, हमें भी है, लेकिन हमें पेटे सर की बहुत कमी महसूस हो रही है। तो हम आपके जो अधिकारी है गणेश जी है, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द पेटे सर को भी यहाँ पर लाकर उन्हें ड्यूटियाँ दी जाए, और हमारे जो हमें लग रहा है कि उनके बगैर अधूरा सा लग रहा है ये रेडियो तैरना, तो हम यही दिल से गुजारिश करते हैं कि पेटे सर को जल्द से जल्द यहाँ ले आइए और उन्हें ड्यूटियाँ दीजिए, हमें उनकी भी आवाज़ सुननी है, उन हमें बहुत कमी महसूस हो रही है उनकी। आज के इस कार्यक्रम में मुझे जो गाना सुनना है वो है अनोखा अंदाज, इस फिल्म का गाना सुनना है मुझे। अलका याग्निक और कुमार सानू का गाया, समीर का लिखा और नदीम श्रवण का ये संगीत है और गाना है।

हो गया। ये गाना मुझे सुनना है। इस गाने को सुनने के लिए कबीर मस्के, आजम, मोहम्मद अख्तर, अमोल कांबड़े, सचिन जी है, हुसैन भाई, भाभी फरजाना, वाइफ सुफिया, तमन्ना, कबीर, आलिना, सरफराज, इरम, इन सब के साथ मुझे आज ये गाना सुनना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी जो गुजारिश की है हमने पेटे सर को, जल्द से जल्द आप मौका दीजिए प्रोग्राम पेश करने का। हम बहुत इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से उनका। धन्यवाद।

डोरी हिला तुझे कप्पा लीला ठिला आगो हिल हिल पोरी हिला तुझे कप्पा लीला ठिला तुझे कप्पा लीला ठिला तुझे कप्पा लीला ठिला गो फैशन मराठी सोबत।

या लठा या ला दिल दुखाते हैं भाई दिल तो ऊपा शिराते हैं दिल हकलुन मागारिये ते काय बोलत नाय काय मागत नाय जीवला

0: गाओ ना गीता, अब तो गाना आता है तुम्हें?
1: मुझे नहीं आता।
2: नहीं मिलना भैया, आजकल तो गीता दीदी खूब गाती है।
3: हाँ हाँ गाइए ना।

0: सर, इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: That's the spirit, sir.

0: अच्छा कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो एक बात, एक बात लेकिन एक बात।

0: संगीत आपल्या मनाचा आरसा, संगीत आपल्या मनाचा संवाद, गाणी जी जागवतात आपल्या मनातील भावनांचे तरंग, हृदयस्पर्शी गाणी, मन स्पर्शून जाणारी गीत, साद घालणारे आवाज, ऐका आमच्या हिंदी चित्रपट संगीताच्या कार्यक्रमातून। ऐकत रहा रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज। ऐकत रहा, आनंदी रहा।
1: अच्छी है, न जाने क्या बात है उनमें, वो जब भी मेरी तरफ देखती है मुझे कुछ हो जाता है।
2: और जब मैं देखती हूँ?
1: अरे जब तुम देखती हो तो गजब हो जाता है, होश उड़ जाते हैं, दिल पे काबू नहीं रहता, छुट्टी हो जाती छुट्टी।
2: अच्छा, सिर्फ देखने में इतना असर?
1: अरे सिर्फ देखने से नहीं, प्यार से देखने से। और फिर प्यार चीज ही ऐसी है, अरे लोग तो पागल हो जाते हैं, पागल।
2: आप भी होने वाले हैं शायद?
1: हाँ हो जाता अगर तुम मुझसे प्यार न करती।
2: ये किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ?
1: व्हाट, अभी तक नहीं कहा?
2: जी नहीं।
1: तो फिर फौरन इसी वक्त एडवांस को?
2: नहीं,
1: मैं भी कलवा के छोड़ूंगा।
2: कभी नहीं।
1: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गलियों पे निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है? ना, ना, ना।

0: हुजूर ये गीत है या कवाली?
1: प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। ओह
2: आप तो लगते ही है कव्वाल, भैरवी भी गाएंगे तो आपके मुंह से कव्वाली लगेगी।
3: आ